0: कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।
1: भक्ति, श्रद्धा, शांतीचा आध्यात्मिक आनंद, रेडियो नगर 90.4 एफएम, आवाज।

0: रात वो डॉट आणि उडी उडाणा डॉट
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

शाबाश। जली को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

0: नहीं नहीं नहीं नहीं, घाम ही फुटला, घाम ही फुटला, अंगा लाया छुटलाय गधरथराट, घाम ही फुटला, अंगा लाया छुटलाय गधरथराट।
1: अरे कुठे गेला तुझा जोर? हो किती तू फाइटर?
2: अरे टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे नहीं समझे।

0: अगन अगन गाम ही फुटला अग गाम ही फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट गाम ही फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट
1: तुमची एवढी आराधना केली तरी तुमचा हाच अवतार
2: रो मत गंगू ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू इन आंसुओं को पोछ दो ये बहुत कीमती है रे।

तमाशा भर इश्कता जरा पिचकरी भर उड़ोदे रंग उड़ोदे रंग मखमली पड़ जा आत पुलवे जी रात चांदनी।

प्रांगण खुद पुड़े घाल तो बैठका शेकड़ा काढ़ तो हे नाक आता रगड़ तो तुझा नवाचा जप आता।

0: E tu, Satyana?
1: रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना रूप तुला न...

0: माँ की स्मृति में जिस बेटे ने मास कमन किया और आज उसी परिवार की लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी जिसके पग फेरे से परिवार का सब कुछ फिर गया, ऐसी ये तीन उनकी माँ और उनका स्मृति दिवस, उस स्मृति दिवस में आज का अनुष्ठान इस भावना के साथ, इस अनुभूति के साथ कि उन्हें जो माँ से प्यार मिला, वात्सल्य मिला, वो सतत उनके जीवन में जीवंत रहे। व्यक्ति अमर होता नहीं, व्यक्ति का दिया हुआ तुम संभालोगे तो कभी खोता नहीं। कोई व्यक्ति अमर होता नहीं, पर उस व्यक्ति ने जो दिया वो यदि आप संजो करके रखते हैं तो उस व्यक्ति से आप कभी दूर होते नहीं। इसलिए भावना किस परिवार के सदस्यों में उनका वात्सल्य, उनके संस्कार वह निरंतर जीवंत रखे, सुरक्षित रखे, इसी भावना के साथ। और दोपहर में उनके आंगन में जिनेश्वरी का पारायण भी आयोजित है। शुरू कर
1: आओ, बड़ी श्रद्धा उल्लास उमंग के साथ विरुद्ध की दूसरी गाथा का संपोर्ट आज करेंगे। पहले सबसे पहले दूसरी गाथा हम 5 बार बोलेंगे।

கஹம் சனானம் கஹதன் சனம் சே சீலம் கஹம் நாய சுயஸ ஆசி ஜானா சினம் பிக்கு ஜஹா தஹேனம் அஹா சுயம் பூஹி ஜஹா நிசந்தம். இக்காதா ஜம்பூ சுவாமி நே சுதர்மா சுவாமி கே சாமனே பிரஸ்துத் கரி. ஏ பாவனா ஜம்பூ சுவாமி நே சுதர்மா சுவாமி கே சரணோ மே நிவேதித் கரி. ஏ பாவனா ஹம் பி சுதர்மா சுவாமி கே சரணோ மே நிவேதித் கரே, குருதேவ் கே சரணோ மே நிவேதித் கரே கி மே நஹீ ஜான்தா ஹூ தீர்த்தங்கர் பரமாத்மா கா ஜ்ஞான் கைசா ஹே. மீறி ஜிஜாசா ஹே உன் உஸ் ஜான் கோ ஜானே ஜிஸ் ஜானக்கே காரணசே தீர்த்தங்கர் ஹு ஜிஸ் ஜானக்கே காரணசே ஸ்வயம் தீர்னே பலே கயோ தீரா தியா. ஸ்வயம் ராஹ பர் தே கயோ மஞ்சில் பர் பச்சா தி. ऐसी उनकी श्रद्धा कैसी थी, कैसा ये विश्वास था उनका कि जहां मैं पहुंचा नहीं हूं वहां किसी को पहुंचा सकता हूं. कैसी उनकी श्रद्धा थी कि किसी का प्रेजेंट उनको दिखता नहीं था, दिखता था लेकिन उसको वैल्यू नहीं देते थे. किसी का पास्ट वो जानते थे लेकिन वैल्यू नहीं देते थे, उसके पास्ट के आधार पर वर्क नहीं करते थे, उसके प्रेजेंट के आधार पर वर्क नहीं करते थे, उसके असीम अनंत भविष्य के आधार पर काम करते थे. वो क्या था, वो क्या है, इस पर उनका फोकस नहीं था. वो क्या बन सकता है इस पर उनका फोकस. कैसी श्रद्धा किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, जो है उसको जानना, जो हो सकता है उसके लिए काम करना, उसको स्वीकार करना, उसके पास्ट को दिमाग से डिलीट करना, स्वयं के दिमाग से डिलीट करना है. अपने दिमाग से किसी का पास्ट डिलीट हो जाए तो अपने कर्म का क्षय हो जाएगा. कैसा उनका शील,

उनका नेचर कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, कैसे वो 24 आवर्स विदाउट एफर्ट्स रहते थे। मैं बोल रहा हूं एफर्ट्स लग रहे हैं, आप सुन रहे हैं एफर्ट्स लग रहे हैं, आपको सुनने में भी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, मुझे बोलने में भी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। किसी को ऊपर उठाना हो तो एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स उसके नहीं लगते हैं जो मेरा स्वभाव नहीं होता है। स्वभाव में एफर्ट्स नहीं लगते हैं। मछली को पानी में तैरने के लिए एफर्ट्स नहीं लगते हैं। आगे आएगा ईगल गरुड़, पंछी में गरुड़, वहां पंछी में गरुड़ कि गरुड़ बिना एफर्ट्स के उड़ सकता है, उसको आसमान में रहने के लिए डेने हिलाने की भी जरूरत नहीं होती, रह सकता है बहुत लंबे समय तक एफर्ट्स लेस। जो एफर्ट्स लेस होता है उसको स्वभाव कहते हैं, उसको सील कहते हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है उसको सील कहते हैं, जिसका रीजन है वो एक्शन है, जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई बीज नहीं है, जिसका कोई कॉज नहीं है लेकिन अस्तित्व है, उसको सील कहते हैं। क्या था तीर्थंकर महावीर का ऐसा, जाना सीनम भिक्कू, एक शिष्य अपने गुरु को भिक्कू कह रहा है, और सच में देखो तो सुधर्मा जैसा भिक्षु दूसरा हुआ नहीं। हम सभी भिक्षु हैं, तुम भी भिक्षु मैं भी भिक्षु, किसकी भिक्षु वो देख लो, तुम सुख के भिक्षु हो, तुम सत्ता के भिक्षु हो, तुम भोग के भिखारी हो, तुम धन के भिखारी हो, जो साथ में नहीं चलेगा, कोई सत्ता किसी के साथ नहीं चलती, कोई संपत्ति किसी के साथ नहीं चलती। अरे साथ चलने की बात छोड़ो, सो जाते तब भी सत्ता तुम्हारे पास नहीं रहती। किसको किसको नींद में पता चलता है कि मैं पीएम हूं, मरने के बाद तो बात छोड़ो, रोज सो जाते हो तब भी सत्ता तुम्हारे, धन तुम्हारे पास नहीं रहता है, बस पड़ा होगा कहीं तिजोरी में लॉकर में, और पूछो आरबीआई को कितने लोगों की करोड़ों की राशि बिना वारस के बैंक में पड़ी हुई है, वारस है नहीं, नो मोर, नो ओनर, ओनर चला गया, वो प्रॉपर्टी पड़ी है, किसका भिक्षु बनना। सुधर्मा स्वामी को मैंने सबसे बड़ा भिक्षु क्यों कह रहा हूं, कि वे भगवान के भिक्षु हैं, भगवत्ता के भिक्षु हैं, और भगवत्ता के भिक्षु बनोगे तो भगवत्ता तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। जाना सिनम भिक्कु, जैसा जानते हो, अहा स्वयं वो ही जहां निसंतम, इतना जैसा सुना है जैसा जानते वो, जैसा सुना है, केवल कान से नहीं सुना जाता है, पांचों इंद्रिय से सुना जाता, ये जैन फिलॉसॉफी है, पांचों इंद्रियों से सुना जाता है, ये फिलॉसॉफी,
ये जैन फिलॉसफी, ये तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको इतना ही पता, कान से सुना जाता है, लेकिन नंदी सूत्र में और आगम में गया है, श्रुत ज्ञान स्पर्श निर्देशी भी होता है। एक इंद्रिय वनस्पति भी सुनती है, और इज़राइल के साइंटिस्ट ने उसको प्रूव कर दिया कि वो कैसे संवाद करते हैं। वो सुनती है, चींटी सुनती है, किसे सुनती हो? गंध से सुनती है, नाक से सुनती है, दिखता नहीं है लेकिन सुनती है। पांचों इंद्रियों से सुना जाता है। तो तुमने पांचों इंद्रियों से जो महावीर को सुना है, मैं तो मेरे टेनेट प्रोग्राम में केवल दो इंद्रियों से, एक इंद्रिय से सुनने के लिए आग्रह करता हूं कि आंख से सुनो। आंख से सुनने का मीनिंग क्या है? कि जो बोल रहा है उसके तरफ नजर लगानी। और यदि आपकी नजर बोलने वाले से हटी नहीं, तो जो वो बोला नहीं वो भी समझ में आ जाता है, और नजर इधर उधर है तो जो बोला वो भी स्लिप हो जाता है। अहा स्वयं भूहि जहा निसंतम, जैसा तुमने सुना है, और कैसे? पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ इमोशन, पीस ऑफ कैरेक्टर, पीस ऑफ एनर्जी, पीस ऑफ ड्रीम, निसंतम, पूर्णतः शांति, पूर्णतः मन भी शांत, दिमाग भी शांत, शरीर भी शांत, कोई सपना भी अंदर नहीं। ऐसे परम शांति में जो तुमने सुना, जाना सिन बिको जहां तयन आ स्वयं भूई जहां निसंत। कल्पना का कुछ मत बताना है। ये जम्बू स्वामी ने उनके पांच जो भगवत के विषय में जिज्ञासा आई, भोगी से, रोगी से, योगी से, कामी से, जो महावीर को मानते थे उनसे, जो महावीर को नहीं मानते थे उनसे। और मैंने कल एक सेंटेंस आपको दिया था, आप उसको साथ में लेकर गए कि नहीं गए मुझे पता नहीं, कि पूरी दुनिया का हर प्राणी नोइंगली अननोइंगली तीर्थंकर की खोज में है। आप भी हो, आप में से कौन है जो स्वयं को डेवलप नहीं होना चाहता है? कौन है आप में से जो चाहता है कि मेरे अंदर जो छिपा हुआ है वो कोई उजागर कर दे? और जो तुम्हारे अंदर के ग्रेटनेस को ओपन कर दे उसको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर है कौन? देते कुछ नहीं है। ध्यान में रखना वाक्य को, जो भी तुम्हें देता है वो तुम्हें भीख मांगना सिखाता है। दुनिया में भीख मांगे इसलिए है कि तुम उनको भीख मांगा बनाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम देते हो। महावीर किसी को भीख देने के फेवर में नहीं है। महावीर तो कहते हैं कि उसके हाथ को ऐसा करने के बजाय उसको हाथ को समर्थ बना, उसके मन को भिक्षु बनाने के बजाय उसके मन को समर्थ बनाए। और ये सारे जितने भी लुटेरू होते हैं, पाखंडी होते हैं, चीटिंग करने वाले होते हैं, वे लोगों को भिखारी बनाने में रस लेते हैं।
डोंट वरी, मैं बोल रहा हूं, तुम नहीं बोल रहे, तुम तो सुन रहे हो। और पूरी देश की अर्थव्यवस्था आज बर्बाद हो गई है कि नेता केवल जनता की भीख को पूरी करने में लगे हुए हैं। ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। डेवलपमेंट और जनता बुद्धू है, बुद्धू उसके समझ में नहीं आता है कि इधर से वो दे रहे हैं, उधर से वो ले रहे हैं। आपको लगता होगा कि बिजनेस टैक्स तो बिजनेसमैन भरता है, टैक्स तो इंडस्ट्रीज वाले भरते हैं। तुम क्या अपने जेब से भरते हो क्या? तुम किससे लेते हो? कस्टमर से ही लेते हो। ये समझ में नहीं आता। तीर्थंकर महावीर कहते ये चक्र बंद करो, सामने वाले को ऐसा बनाओ कि वो मांगना भूल जाए, गिड़गिड़ाना भूल जाए। किसी को देना, उसने भीख मांगी, वो गिड़गिड़ाया, वो रोया, और आपने दिया। इसका सिंपल मीनिंग है कि तो रो, मैं थाने दिवला। और ये सारी आदत किसने लगाई? इन्होंने लगाई। बच्चों जब तक रोवे नहीं तब तक उन्हें दूध पिलावे नहीं, और रोने लागे तो उठावे। हेलो, और तुम भी वही करते हो। जब तक बच्चा हंसता खेलता है तब तक तुम्हारे पास रखते हो, और रोने लगे ए संभाल। हेलो, बराबर है? नहीं, मैं अरे क्या मांगते हो तुम? परमात्मा ने कहा तुम ज्ञान के भिक्षु बनो, श्रद्धा के भिक्षु बनो, चरित्र के भिक्षु बनो, और तुम पैसे के लिए भिखारी बनते हो। व्हाट यू डिमांड? परमात्मा ने

भगवान महावीर ने यहां तक कहा, तुझे किसी ने कुछ दिया है तो उसको धन्यवाद मत दे। हेलो, क्या कहा? तुझे किसी ने कुछ दिया है तो उसकी प्रशंसा मत कर, धन्यवाद मत दे। मुहादाही मुहाजीवी दोवी दुल्ला, जो बिना प्रशंसा के लेता है और जो बिना प्रशंसा की इच्छा के देता है, वे दाता वे भिक्षु दोनों की ही सुगति होती है। वो देने वाला भी तीरता है, लेने वाला भी तीरता है। लंबी बात है, लेकिन ज्ञान का भिक्षु, साधना का भिक्षु, और इसलिए वो पूछते हैं कि ऐसा अनूठा ज्ञान जो चंडकोशी को चेंज कर दे, वो श्रद्धा कहां से लाए कि सारी दुनिया रोकती, मत जा चंडकोशी के पास, जो गया वो मरा। ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस, ये चंडकोशिक पर विश्वास, स्वयं पर जो विश्वास करता है वो दूसरे पर विश्वास करता है, जिसका स्वयं पर विश्वास नहीं वो दूसरे पर विश्वास करता नहीं। ये श्रद्धा कहां कैसी है उनकी कि मैं चंडकोशिक को चेंज कर सकता हूं? इसके पहले क्या लगता है? चंडकोशिक चेंज हो सकता है, ये श्रद्धा लगती है। ये श्रद्धा तो तुम्हारी तुम्हारे बेटों पर नहीं रही, तुम्हारे श्रीमती पर नहीं, इनके तुम्हारे पर नहीं रही कि थे कभी सुधर सको। हेलो, जल्दी से हाथ ऊपर करो। किने किने विश्वास है कि महाराज श्रीमान जी आज नहीं तो काले सुधरेला? मार साहब, मैंने माला में भी किसाई जगह थाने घना अच्छा दिखे, और थाने सुन्नु होशीला ना, इनका मन में था कि कई इमेज है, तेते कभी वोट मेरे ने सुन जो सगला था का विषय में अच्छा बोली ला ना। हाँ, थका साथ वे अच्छा है, हमारा साथ किस जगह देखो मने मालूम है। हेलो, अरे बोले मां सब सगला साथ अच्छा वागे अंति उसाचो ते सगला साथे अच्छा वागो घरवाला साथे। हेलो, कस्टमर साथे अच्छा वागो। जो जो भी यहां शॉप पर बैठते हैं वे हाथ ऊपर कर सकते हैं जिसने कस्टमर की बात पर गुस्सा किया हो। कस्टमर कुछ भी बोले, हा बहू अगली बार दे बोला। हेलो, अरे उतना पेशेंस घर में रखना, नाम नहीं लेता उस व्यक्ति का, पहले लेता था, अब नहीं लेता हूं। मीटिंग चल रही थी पुणे में, कार्यकर्ता बैठे थे, अनेक व्यक्ति थोड़ा रफ और जोर से बोल रहा था। मैंने कहा तो मेरे सामने इस टोन में नहीं बोल सकता है। वो तिरसिंग राव मेजला, मैंने कहा जा भैया, अब मेरा पुराना था, वो क्लोज था सबके, हमारे सब वो आना बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। मैंने कहा ठीक है, बुला लो। मैंने कहा ठीक है, उसकी बेटी ने अठाई करी, अब अठाई के पालने के लिए बोले घर पर आओ। मैंने कहा तेरा बाप बुलाने के लिए आऊंगा तो आऊंगा, तेरा बाप ले जाने के लिए आएगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा।

बेटी का पालना कराना है तो लेने के लिए आया। रास्ते में चलते हुए मैंने पूछा, उसका होटल है, मैंने पूछा, अरे तू जिस टोन में, जिस आवाज में मीटिंग में बोलता है, स्थानक में बोलता है, मेरे सामने बोलता है, इसी टोन में तू होटल में बोलता है क्या? मर साहब उठे किसके बोल सकू, कस्टमर ने राजी रखना रेवे। मैं कह कस्टमर थे कितना देवे, एक कस्टमर को कितना पैसा मिले थे? 50 रुपया, मैक्सिमम 100 रुपया। होटल में एक कस्टमर से कितना कमाएगा? मैक्सिमम 200 रुपया। मैंने कहा उतनी कीमत तो मेरी कार, हेलो, समझ में आया नहीं आया? जिस टोन में तुम कस्टमर के सामने नहीं बोलते, उस टोन में तुम मां बाप के सामने बोल लेते हो। यानी कस्टमर जितनी भी कीमत तुम्हारे पास मां बाप की नहीं। व्हाट इज योर कैरेक्टर? कहम चनानम कदंसनम से सिलम कम ना यसु ये सासी जाना सिनम बिको जहा तहनम आहा स्वयं भूई जहा निसंतम। चंडकोशिक पर विश्वास, चंडकोशिक पर भरोसा, जो पिछले 3 जन्म से गुस्सा करता आ रहा है, जिसने इस जन्म में नजर से कई लोगों को मार दिया है, लेकिन किसी के अंदर के छिपी हुई अच्छाई पर भरोसा, आज के सिंपल पचकान है, किसी के बुराई पर भरोसा करना नहीं, किसी के अच्छाई पर भरोसा करे बिना रहना नहीं। लंबा हो गया कि पचकान, छोटा करो गई, छोटा कर दो। घर वालों के अच्छाई पर भरोसा करना कि घर वाले अच्छे हो सकते हैं। हेलो, प्रयास नहीं, वो प्रयास दिल्ली में, बंबई में आठे प्रैक्टिकल है। मैं आठे बखान दे उनको प्रयास नहीं कर रही, बखान दे रही हूं। अरे घर वालों के अच्छाई पर भरोसा करोगे, आपको पता नहीं श्रद्धा क्या करती है, आपको पता नहीं श्रद्धा क्या करती है। एक श्रद्धा भरी नजर ने प्रवीण ऋषि को चेंज कर दिया है। मेरे गुरुदेव की वो श्रद्धा भरी नजर, और ऐसे कई लोगों की श्रद्धा ने मुझे चेंज कर दिया। मैं त्रिनगर में था, चौमासा चल रहा था और मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में गर्मा गर्मी हो गई, और उसी गर्मा गर्मी में मैं गोदसी के लिए पात्र लेकर के चल पड़ा। उस समय महावीर गाथा चलती थी रात में, और वो चंदन बाला के पन्ने पर पहुंची हुई थी। गुस्से में दिमाग था, गुस्से में जा रहा था, बहुत कुछ मन में चल रहा था। एक घर में प्रवेश किया और सामने वाले बेन ने कहा, मेरे महावीर पधारे, मथेय नंदामि, वही झटका लगा। मूर्ख, वो तुझे महावीर समझ रही है, अंतु चंडकोशिक बनकर घर में आया है। एक का विश्वास चेंज कर गया। ये श्रद्धा कि चंडकोशिक भी सुधर सकता है, ये श्रद्धा। आप सोचते कि भगवान पर श्रद्धा करना श्रद्धा है, अरे भगवान पर तो कोई भी श्रद्धा करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चंडकोशिक भगवान हो सकता है, इस पर श्रद्धा करना। महावीर क्यों अनूठे? कि कल तक 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करने वाला अहिंसा का पालन कर सकता है, ये विश्वास।
सोचो तो सही, पॉसिबल है क्या? कल दिन तक 5 महीने 25 दिन से जो निरंतर चेन किलर 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करने वाला, निरापराधी की हत्या करने वाला, वो साधु हो सकता है, वो अहिंसक हो सकता है, वो सिद्ध हो सकता है, ये विश्वास। कहम चनानम क दंसनम सिलम, क्यों श्रद्धा ही नहीं? जिस पर श्रद्धा रखी उसको श्रद्धेय बनाया। जिस पर तुम्हारी श्रद्धा होती है वो श्रद्धेय होता है। लेट मी रिपीट, तुम्हारे भक्ति में शक्ति है, तुम किसी को भगवान बना सकते हो। मैं बहुत बार बोलता हूं, ब्लिसफुल कपल में बोलता हूं, पेरेंटिंग में बोलता हूं, और सिखाता हूं मां बाप को, सिखाता हूं इन दोनों को। किनको? हाँ, एक जल्दी से जवाब देना, समय हो गया मेरा। मूर्ति भगवान है क्या? मूर्ति भगवान है क्या? श्रद्धा की नजर से देखो तो और कुछ है क्या? हेलो, इस आंख से देखो तो मूर्ति है, उस आंख से देखो तो बोलो ना। अरे जिस आंख से तुम पत्थर की मूर्ति को भगवान बना सकते हो, जो बोलती नहीं, चलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, उसको तुम श्रद्धा से देखते हो भगवान हो जाती है। यदि इंसान को उस नजर से देखा तो वो भगवान नहीं होगा क्या? ये श्रद्धा में सामर्थ्य है। जिस पर तुम श्रद्धा रखते हो वो श्रद्धेय हो जाता है। श्रद्धेय हो जाता है इसका मतलब भगवान हो जाता है। भगवान को जन्म देने का सामर्थ्य किसी में है तो भक्ति में है। ये श्रद्धा, और तीर्थंकर की श्रद्धा, अनंत श्रद्धा, अनंत जीवों पर श्रद्धा, किसी को लेकर के उनके मन में डाउट नहीं है, किसी को लेकर के उनके मन में अविश्वास नहीं है। गोशालक को भी अविश्वास है, गोशालक भी मोक्ष में, किसी ने पूछा गोशालक मोक्ष में, बोले जाएगा गोशालक पर, जमाली पर, उस पर विश्वास। ये विरुद्ध हुई है। और मैं बस एक वाक्य बोल करके रुक रहा हूं, रुक नहीं पा रहा हूं, लेकिन रुक रहा हूं, रुक नहीं पा रहा हूं। दो तीन समय में मुझे रुकना, मैंने बहुत जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है। एक तो आनंद गाथा चलते उस समय रोकना, स्वयं को ब्रेक लगाना पड़ता है। महावीर गाथा चलती है उस समय भी रोकना बहुत हेवी एक टास्क रहता है, और जिस समय वीर थी चलती है उस समय तो रोकना, लेकिन रुकता हूं एक वाक्य बोल करके। जो वीर थुई में है वो कहीं पर नहीं है। महावीर से मुलाकात कहीं हो तो वीर थुई में हो सकती है। भगवान को देखना हो तो भक्त के हृदय में ही देख सकते हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, नहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं,
मत भक्ता यत्र गायन्ते, मेरे भक्त जहां गाते वहां मैं रहता हूं। एक परम भक्त का गीत है विरत हुई, और आग्रह आप लोगों से, आप आ रहे हो, आपको धन्यवाद। महावीर ने मना किया धन्यवाद देने का, लेकिन मैं देता हूं, अभी काम ही नहीं आपको, महावीर ने मना किया, लेकिन क्या करो, सारे धन्यवाद के भूखे लोग रहते तो धन्यवाद उनको देना पड़ता है। मां साहब में इतो करियर मैंने थपकी भी नहीं दी, एप्रिसिएशन नहीं मिला, थाने सबसे तो भूखे नहीं रहे, हेलो एप्रिसिएशन, तो भूखा ने खिलाना पड़े, कई करा है ना? आप आ रहे हो, लेकिन आग्रह करूंगा कि जो जो परमात्मा से बिछुड़े हैं, जो जो परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कि जिसको तीर्थंकर महावीर की जरूरत नहीं। मैं प्रवीण ऋषि के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं समर्पण चतुर्मास समिति के लिए भी नहीं बुला रहा हूं, मैं मेरे गुरुदेव के जन्मोत्सव के लिए भी आप नहीं बुला रहा हूं, बुला रहा हूं तो उनके लिए जो तुम्हें तीर्थ बना सकते हैं, जो तुमको तीर्थ बनाते हैं, उस तीर्थंकर के आराधना करने के लिए आमंत्रण है, गहराई से आमंत्रण है। और कल के यजमान है सुनील जी, संजय जी, मुनोद परिवार, आगे आ जाइए।

0: इधर से भी कोई मनुष्य परिवार का आया होगा तो आगे आ जाए, अच्छा बहुत जल्दी आ जाओ, थाने मालूम नहीं करते कौन देखो, रोज आवलो तो मालूम पड़े लकड़ तक आवन रहे देखो। क्या करना पता है किसका? नहीं लेके नहीं आने का, केवल घर में इसकी एक माला गिननी है इस गाथा की,
1: सामूहिक
0: परिवार ने साथ में बैठ करके, अकेले अकेले नहीं गिननी है। और सारे तुम्हारे क्लासिक के सारे कर्मचारियों से गिना होंगे तो और अच्छा हो जाएगा।

0: வீர சுவாமிக்கு
1: மங்கள் பாண்ட்
2: குருதேவ் கியாக்யா சத்தாரி மங்களம் அரிஹந்தா மங்களம் சித்தா மங்களம் சாஹு மங்களம் கேவலி பண்ணத்தோ ரொம்ப மங்களம் சத்தாரி லோகத்மா அரிஹந்தா லோகத்மா சித்தா லோகத்மா சாஹு லோகத்மா கேவலி பண்ணத்தோ ரொம்ப லோகத்மோ சத்தாரி சரணம் பகுஜாமி அரிஹந்தே சரணம் பகுஜாமி சித்தே சரணம் பகுஜாமி சாஹு சரணம் போ கேவலி பண்ணத்தோ ரொம்ப சரணம் பகுஜாமி அரியந்தோ கா சரணா சித்தோ கா சரணா சாதுவோ கா சரணா கேவலி பிரரூபி தயா தரம் கா சரணா சார் சரணா துக்கரணா சுக்கரணா ஓர் சரணானி கோய் ஜோ பவ்ய பிராணி ஆதரே தோ அக்ஷய அவிச்சல் பதோ.
1: ஹர் பரிவார் கே அப்னே ஸ்கில் ஹோதே ஹர் பரிவார் கா அப்னா கேரக்டர் ஹோதா ஹர் பரிவார் கே அப்னே சஜாவட் ஹோதீ ஹை. கல் ஆயா போரா பரிவார் கா आज आया देसांडा परिवार का, कोई किसी की कॉपी नहीं कर रहा है, सब अपने अपने ढंग से क्रिएशन कर रहे हैं. अब कल मुनोद परिवार का क्रिएशन है, देखते क्लासिक का क्रिएशन कैसे आता है. अरे चैलेंज दे उनको, काम है मारो तो. आइए शीतल रत्नेश कोठारी, इनके आज 15वां पास है आगे बढ़ने के भाव है. सतीश प्रकाशलाल कोठारी, इनके आज 15 की 55 है, दोनों एक साथ आ जाएं.
2: संदेश सुबह सुबह दिन निकल के पहले ही आ जाता है और उसकी श्रद्धा भक्ति बहुत प्रशंसनीय है. प्रतिदिन आना, साथ ही साथ संत सतियों की पूरी सेवा करना, यह उसने जीवन में धारा हुआ है. तो ऐसे युवक ने आज 15 उपास किए हैं, हम उसकी हार्दिक हार्दिक प्रशंसा करते हैं. कैसी अतीत में उसने मास कमन भी किया था, अभी इस बार 15 किए हैं जरूर. आज 15 है 15 दो 30 32 भत्तम दिव्यम भी आरमणतम भगिन सहस्त्रागरिणम
1: उपास के पचकान लेने वाले को
3: धन्यवाद.
1: सूर्योदय के पहले आकर के साधु संतों के भक्ति करने वालों को
3: धन्यवाद.

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।